आधार ये करम माता पिता बंधु सख सब पिता मना जन जीवन घन ये करम भक्त जन जीवन घन ये करम राम राम राम श्री राम राम।